कहे गुरिया गए मन खोटे कूड़ कूड़िया रे। जहां गुर कहे उठो मेरे भाई बह जाहे कुसर बगलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै चुन कढे लद्धो वारे। ओए अगै पिछै।

परणे जिसनु आया प्रेम रस तिसै ही जरणे बाणी उचर है साध जन अम्यों चल है चरणे पेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर तरणे स्लोक

अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आ गया वै सो सुख हम हो ना मांगया पावै बिख्या अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म नराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादिक नारद मुन शेखा तिन पी तन मेहमान नहीं देखा इस मन को कोई खोज हो पाई

पटक बेज महराव रहो जाको तीन लोक विस्तार अलहल हंता भेद शय कश कश पायो भेद उल्ट भेद मन भेदयो पायो अपंग अशेद।

लक्ष्मी बरस्यों जौ ल्यों लावै सोग मिटै सब ही सुख पावै खखा खिरत खपत गए केते खिरत खपत अजहू नह चेते अब जग जान जौ मना रहै जह का बिशरा तह थिर लहै।

पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सकल सामान चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मुरार सत संतोख का तरहो ध्यान कथनी कथिय ब्रह्म ज्ञान।

तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पू।

देख बहु करै, दुख बिखिया सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुविधा छोड़ नाम निस्तरै, सिफत सलाहन सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोविंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन

जे बहुता समझाइए भोला, पीसो अंधो अंधा रहाओ। लख खटिया है, लख संजिया है, खा जाए।

स्वर्ण शोभा कंठ फूल प्रत्यखी दृष्ट पाए सगल निधान दुष्ट दूत की चूकी कान साध खुशियां।

आढ़ आढ़ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल कृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

बिरहड़े कर चौथा शंता की जात। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिय प्यारे दर्शन को बल जाओ। जिस सिमरत दुख बीस रह प्यारे सो क्यों तज ना जाए। इहो तन वेची संत पह प्यारे प्रीतम दे मिलाए।

हई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़।

मिल सतगुर मल लह जाए जियो, जोग द्वा पर आया परम परम हाया, हर गोपी कान उपाय जियो।

अमृत शक्षके गुरतुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत भगत।

पुर नहिंदाइय दुख दर्द ना पौ व्यापै नाम सिमरत सद सुखी सास सास आराध हर हर त्याए सो प्रभ मान मुखी सास

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कै हृदय वसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध

कर टरक परे है मुख हो न निकसै बाता। थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने भ्रमते, थाका मन कुंचर और थाका देश।

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग

रहाओ। गुरमुख वड भागे जिन हर हर नाम अधारे, हर हर अमृत हर रस पावे गुरमत भगत भंडारे। जिन दर्शन सतगुर सत

गुर शब्द हर रमणम मत तत ज्ञानम कल्याण निधनम हर नाम मन रमणम चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं

जा कर्म धर्म सब बंधना पाप पुन संबंध ममता मोह सो बंधना पुत्र कलत्र सो तंद जह

मजलिस त्रिष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल। इत मद पीतै नानका बहुते खटिय है बेकार।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवे सोए, गुरमुख शब्द सच करणी सार, गुरमुख नानक परवारे साधार, वडहंस महला तीजा।

निर्मल मन करण कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

सदा सुख बसहि, सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजै पाए परम विभूति।

वढ़ांस महला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम राख जगत सगल दे हथा राम समराथ शरणा जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हों कुर्बानी दास तेरे जिन्नी एक पछाता।

दिन रस भोग सातन महल सवाणी जिन प्रयो जाता कर्म विधाता बोले अमृत बाणी गुणवंतिया गुण सार है अपने कंत संभाल है।

ही मिल है जे सतगुर लागह साचे पाए सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए अवगुण शब्द जलाए दूजा पाओ गवाए सच्चे ही सचराती सच्चे शब्द सदा सुख

जाए। एक रूप है पिर है विशुनिया, अंधी ना जाने पिर नाले, गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा संभाले।

जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब तन तन। जिन हर भगत भंडार लहाया। श्लोक महला तीजा। सतगुर मिलिया।

सर्व सुखा सब जन्म तिना का सफल है जिन हर के नाम की मन लागी भूखा जिनी गुर कै बचन आराध्या तिन विसर गए सब दुखा ते संत भले गुर सिख है जिन नाही चिंत पराई चुखा तन तन तिना का गुरु है जिस अमृत फल हर लागे मुखा श्लोक महला तीजा।

हन सो गुर सिख कहिए, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया, तिस गुर सिख कौ हो सदा नमस्कारी। जो गुर कै पहने गुर सिख चलिया, श्लोक महला तीजा।

जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो। गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो। चलताओ ठाक रखो कर अपने।

चात्रक जल ज्यो चात्रक जल बिन बिल लावै बिन जल प्यास न जाय गुरमुख जल पावै सुख सहजे हरिया पाए सुपहाई।

जिन हर ते आया सब किश तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा धन दिया सुखदाता निखोट न कभी ही जाई आनंद पया।

मोह पटल सब जगत ब्यापियो भगत नहीं संतापा। कह रविदास भगत एक बाठी अब एह का स्यों कहिया जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सही है। दुलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बेकै राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो।

सतगुर सेव खर्च हर बंद हो, मत जान हो आज के काली। हर के संत जप हो हर जपना, हर संत चला हर नाली। जिन हर जपया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन

आई किव छूट है हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जप्यो तरह तरह की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जप।

वह सब गाव है हर हर उत्तम बाणी गाव्या सुनया तिनका हर थाए पावे जिन सत गुर की आज्ञा सत सत कर्म।

जुग महें धर्मा जन कौ नाम वडाई सोभ नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाऊ।

जवाम मांगो राम ते सब थोक मानुख पाओ जाचत श्रम पाइये प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमृत।

हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस

रहाउ। सुख आराधन दुख आराधन बिसरा ना काहूं बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा दिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा।

परमेश्वर है, आद पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

पौड़ी। हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मह थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोकन

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

हर कथा हर जस साध संगत सिउ एक मोहत न एव मन लायो बिगस्यो पेख रंग कुसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल सिउ पाओ न कीनो नह सतपुरख मनायो तावत कौ ताव है बहु भांति ज्यों तेली बलद परमायो नाम दान

अनजस ऊतम खट दर्शन गाल है राम शंकर करोड़ तैतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मर माम सुर नर गण गंधर्व जस गावे।

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

लाहे हो सच सब ऊपर हर तनी सब आए हुकम खसमा हो हुकम सब वर्तनी सच साहेब साचा खेल सब हर तनी।

हाथ फलगा, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रत पलगा।

आई। ऐसा इस हर धन का शाहर आप है संत हो, इस हर धन का शाहर आप है संत हो, जिसनों दे सो हर धन लद चलाई।

केसा का कर बीजना संत चौर टुलहावो, केसा का कर बीजना संत चौर टुलहावो।